मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजुज इसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है, वो ये कि तुम खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उनका निगरान था और तू हर चीज से खबरदार है।

क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मेह बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी।

0: उनसे पूछो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो खुदा का, उसने अपनी जाते पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने तई नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते।
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता जानता है।
1: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
0: कहो क्या मैं खुदा को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ और ये कि तुम ए पैगंबर मुशरिकों में न होना।
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
0: ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर खुदा ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और ये खुली कामयाबी है।
1: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

0: और अगर खुदा तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज पर कादिर है।
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ

0: उनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि खुदा ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि खुदा के साथ और भी माबूद हैं? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।
1: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें खुदा की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे।

0: देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे सब उनसे जाता रहा।
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

0: काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं, ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं।
1: बल बदा लहुम मा कानू युखून मिन कब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हू वइन्नहुम लकाज़िबून।
0: हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज उन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से उनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं।
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين।
0: और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे।
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون।
0: और काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे और वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। खुदा फरमाएगा अब कुफ के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो।
1: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون।
0: जिन लोगों ने खुदा के रूबरू खड़े होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहाँ तक कि जब उन पर कयामतें नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस तकसीर पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की, और वो अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है।
1: वमल हयातु दुनिया इल्ला लअबु वलहु وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون।
0: और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो खुदा से डरते हैं, क्या तुम समझते नहीं।
1: قد نعلم

0: हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम खुदा की आयतों से इनकार करते हैं।
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا

और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

0: कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से लड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें।
1: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل।
0: और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुठलाया हालांकि वो सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूँ।
1: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون।
0: हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा।
1: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हैं, तो उनसे अलग हो जाओ यहां तक कि और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठो।

0: परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हाँ नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों।
1: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

0: यानी जब रात ने उनको पर्दे तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं।
1: फलम

फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फलम

फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।

0: ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने उन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो उनसे कभी इनकार करने वाले नहीं।
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين।
0: ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी थी, तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इस कुरान का सिला नहीं मांगता, ये तो जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है।
1: वो मैं

0: रास्ते पर निकल पड़े। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हमारे पास उस वक्त खबर पहुंची जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साजदादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अकद में थी। दफन करके कब्र पर मट्टी बराबर कर चुके थे। उनकी तैमारदारी के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में छोड़ दिया था। माल गनीमत का मसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारका खत्म होने के बाद 3 दिन बदर में कयाम फरमाया और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से कूच नहीं फरमाया था कि माल गनीमत के बारे में लश्कर के अंदर इख्तलाफ पड़ गया और जब ये इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है वो आपके हवाले कर दे। सहाबाए कराम ने इस हुक्म की तामील की और उसके बाद अल्लाह ने वही के जरिए इस मसले का हल नाजिल फरमाया। हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से निकले और बदर में पहुंचे। लोगों से जंग हुई और अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त दी। फिर एक ग्रोह उनके ताकुब में लग गया और उन्हें खुदेड़ने और कत्ल करने लगा और एक ग्रोह माले गनीमत पर टूट पड़ा और उसे बटोरने और समेटने लगा और एक ग्रोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले रखा कि मुबादा दुश्मन धोखे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अजियत पहुंचा दे। जब रात आई और लोग पलट पलट कर एक दूसरे के पास पहुंचे तो माले गनीमत जमा करने वालों ने कहा कि हमने उसे जमा किया है, लिहाजा इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। दुश्मन का ताकुब करने वालों ने कहा, तुम लोग हमसे बढ़कर इसके हकदार नहीं, क्योंकि इस माल से दुश्मन को भगाने और दूर रखने का काम हमने किया था। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर कार फरमा रहे थे उन्होंने कहा, हमें ये खतरा था कि दुश्मन आपको गफलत में पाकर कोई अजियत न पहुँचा दे, इसलिए हम आपकी हिफाजत में मशगूल रहे। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के मुतालिक पूछते हैं, कह दो गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस अल्लाह से डरो और अपने बाहमी तालुकात की इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर वाकई तुम लोग मोमिन हो। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज बदर में कयाम फरमाकर मदीने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मुशरिक कैदी भी थे और मुशरिकीन से हासिल किया हुआ माल गनीमत भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी निगरानी सौंपी थी। जब आप वादी सुफरा के दर्रे से बाहर निकले तो दर्रे और नाजिया के दरमियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वही खुम्स 5वां हिस्सा अलैदा करके बाकी माल गनीमत मुसलमानों पर बराबर तकसीम कर दिया और वादी सुफरा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया कि नजर बिन हारिस को कत्ल कर दिया जाए। इस शख्स ने जंग बदर में मुशरिकीन का परचम उठा रखा था और ये कुरैश के अकाबर मुजरमीन में से था। इस्लाम दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा रसानी में हद दर्जा बड़ा हुआ था। आपके हुक्म पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर के ज़बिया पहुंचे तो उकबा बिन अबी मुईद के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। ये शख्स जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाया करता था उसका कुछ जिक्र पिछली नशिस्तों में गुजर चुका है। यही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नमाज की हालत में ऊंट की ओजड़ी डाली थी और इसी शख्स ने आपकी गर्दन पे चादर लपेट कर आपको कत्ल करना चाहा था। और अगर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बर वक्त ना गए होते तो उसने अपनी दांत में तो आपका गला घोंट कर मार ही डाला था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म सादर फरमाया तो कहने लगा, ए मोहम्मद, बच्चों के लिए कौन है? आपने फरमाया, आग। उसके बाद हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और कहा जाता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। जंगी नुक्ता नजर से इन दोनों तागूतों का कत्ल किया जाना जरूरी था क्योंकि ये सिर्फ जंगी कैदी न थे बल्कि जदीद इस्तलाह की रूह से जंगी मुजरिम भी थे। اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے یہی لوگ سربر اوردگان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض برداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مسفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد آمد ہوئی۔ آپ نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
2: علیک یا سیدی،
1: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
2: سید الاولین والآخرین۔
1: FM 92.6

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد تاشفین صاحب، اینڈ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ایک سبجیکٹ ہے، جو کہ اوور آل جو سبجیکٹس ہیں، جیسے جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے اس کی جو سب برانچز ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو پولیٹیکل سائنسز کی برانچز ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کر رہے تھے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے جو گریجویٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب الومنائز بن چکے ہیں، سر وہ کسی ریناؤنڈ پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ریناؤنڈ جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہیں؟
2: ہاں بالکل، ہمارے ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو مینی الومنائی یٹ، ہمارا ابھی صرف دو بیچ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی اچھی پہنچ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیا آفسز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جا چکے ہیں۔ ابھی صرف پچھلے سال ہی ہمارے دو اسٹوڈنٹس، حالانکہ ہمارے کوہارٹ از ناٹ ویری لارج، اس کے باوجود ٹو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان فارن کنٹریز۔ ایک اسٹوڈنٹ ہماری ٹرکی میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہنگری میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں فار ڈوئنگ اے ماسٹرس ڈگری۔ تو یعنی یو سی پی از اے گریٹ پلیس ٹو گو اینی ویئر، اٹس اے اسپرنگ بورڈ، اگر آپ باہر جانا چاہیں، فنڈنگ بھی لینا چاہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ملک کے اندر بھی کام کرنا چاہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ابھی ملا کچھ دن پہلے، اور وہ ہی واز مائی اسٹوڈنٹ فرام دی ایٹھ سیمسٹر لاسٹ ایئر میں تھا، اور وہ ماشاء اللہ نکلتے ساتھ سنتا ہے کہ سر میری تنخواہ آلریڈی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور اب اس کو گریجویٹ ہوئے لٹرلی ابھی کچھ 2 ماہ ہوئے تھے۔ تو ماشاء اللہ یو سی پی کے اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ بالکل۔
1: اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بندہ میڈیا پڑھتا ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتا ہے، ایز اے نیوز اینکر کام کر سکتا ہے، تو سر جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتائیے گا سر کہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز اور کیا کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟
2: پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر، یہ آئی مین دیر از اے ویری وائڈ ارے آف ایریاز جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ جنرلی سول سروس کا ہوتا ہے۔ تو جنرلی اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر پڑھتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ ہمارے سول سروس ایگزام بہت ہائی ہوتا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو یا پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اسٹوڈنٹس دے جنرلی ڈو ویری ویل۔ اور آپ اگر دیکھیں جو پاس اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر رکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سی ایس ایس کا ایگزام آپ کا ہے یا پی ایم ایس کا، اس میں بڑا ہیوی ایمفسس ہوتا ہے ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے بیسکلی آپ کی سی ایس ایس کی تیاری ساری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے آدھے سبجیکٹ سی ایس ایس کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ میڈیا اسٹڈیز، آئی آر پول سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیا میں بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کو دنیا کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں آسانی سے جا کے وہ اینکر پرسن یا اینالسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل سبجیکٹس چونکہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ایریا اوپن ہوتا ہے۔ آئی مین فار ایگزامپل آپ نے کوئی جنرل مینیجریل جاب کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیسیفک اسکل، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سب ایریاز بھی اوپن ہیں، مینجمنٹ، بزنس کے اندر، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر۔ میرے بہت سے جو جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی وہ کارپوریٹ جابس بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ کا این جی او سیکٹر ہے، آئی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہے، کنسلٹنگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔
1: ویل دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر سر کہ ایک جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، دیٹ از ویری نائس ٹو ہیئر سر۔ اچھا سر، موونگ آن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے شو کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایڈمیشن کے کرائیٹیریا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس جو میرے لسنر نے ابھی ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، سر کیا کرائیٹیریا ہے اس کا، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے، مطلب اس کو کتنے انٹرمیڈیٹ کے مارکس چاہیے اور کیا اسکالرشپ وہ اویل کر سکتا ہے؟
2: ہاں، اس میں ہم جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آرٹس پڑھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مارکس کی بات ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکور 50% مارکس، جو آپ نے اگر میٹرک ایف ایس سی میں لیے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔
1: اچھا سر، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو आई गेस द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो कि ये है कि लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, UMT है, UOL है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑफ़र करवा रही हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो UCP है, UCP ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे सेट अपार्ट करता है? हम क्या ऐसा यूनिक दे रहे हैं, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है?
2: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपेटिटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं फॉरम्स, अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty है उसका emphasis आ रहा है इस बात पर है कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change. और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और students उनसे खुद मिलते हैं, interact करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. It's a very open, frank environment. तो जो exposure students को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें या मार्केट में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में. तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मेंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है. तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेके, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
2: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली PhD भी लॉन्च कर दिया IR में, और पॉलिटिकल साइंस का BS भी इतना पुराना नहीं है और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर PhD की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू UCP.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए. तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि UCP का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
2: जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को, we have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आके हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम. तो एवरी स्टूडेंट हैज ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच्ड विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल हैं या एकेडमिक मसाइल हैं दे कैन ईजिली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दे कम एंड सेड दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स.
1: वेल दैट इज ग्रेट टू हियर सर. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो IR है उसको क्यों चूज किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज किया जाए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है. और जाहिर है स्टूडेंट्स, हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक FSC करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरत को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल टेल यू गिव यू दैट परस्पेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को यही पढ़ना चाहिए। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यू नो, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्यों पढ़ने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर डिशिंग आउट सो मैनी आई टी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है, एक तो यह है कि आई टी चूँकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली AI इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है, तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अभी ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद AI कम्प्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो। इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं, अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द US, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं AI के ऊपर, वो ये बता रहे थे कि हमारे अब AI के जो एजेंट्स हैं, जो AI बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो AI की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी AI इज़ बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज़। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर ज़रूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, AI ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, AI आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले ChatGPT 5 आ गया है, या आगे ग्रॉक 4 आ गया है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर AI की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, IT की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह कंप्यूटर एजेंट्स हैं, तो इंसान कहाँ पे है? वहाँ पे उसका दिल करेगा कि मैं कोई पोइट्री पढ़ूँ, कोई हिस्ट्री पढ़ूँ, कोई फलसफा पढ़ूँ, कोई इंसानी ताल्लुक बनाऊँ। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो वहाँ पे फिर दिस इज़ वेयर यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ का एक जो ग्लोबल स्केल है वो पॉलिटिक्स और IR है। तो वहाँ पे फिर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ वेयर रियली आई थिंक फ्यूचर में इवन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव यू विल बी बेटर ऑफ स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, IR देन स्टडिंग इवन कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ माई व्यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि AI वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड।
2: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं।
1: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू FM 92.6। आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उबने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: वेदों के टाइम पीरियड्स।
1: राइट,
0: वेद के मीनिंग है इल्म की किताब।
1: ठीक है सर,
0: ये नहीं कि हिंदुओं की किताब, उसके साथ लगेगा ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो फिर वो मजहबी किताबें बनेंगे।
1: ओके, वेद, जैसे वेद जो है उसका मतलब बेसिकली बुक है।
0: बुक, बुक मतलब जैसे ना वो इंडिया में कहते हैं आपके पास इतिहास वेद है, मतलब हिस्ट्री की किताब, इतिहास जिससे सारी बुक्स के साथ।
1: सो एनी लिटरेचर इज वेद।
0: वो लेकिन वो जब वो लोगों को यूं ही महसूस होने लगा, तीन वेद जो थे आज से 4,000 साल पहले टेक्सला में लिखे गए थे ये वेद, और उसके 100 साल बाद सामवेद लिखा गया। ये जो तीन वेद थे सामवेद से पहले के मैंने बताया, ये चैट टाइप है ना, पढ़े ही जाते थे। तो जब सामवेद 100 साल बाद लिखा गया तो उसको समझे के गाकर भी कहा गया, लेकिन वो जब गाया गया तो उनको वो चूंकि हाई पिच से करना पड़ता था तो वो एक सुर ऊपर के सुर से गाते थे, जैसे ओम नमो भगवती,
1: एक ही सुर पे,
0: एक सुर पे। अब जो उन्होंने देखा वो तो बड़ा हार्ड है, तो उसका बेस का सुर फिर मतलब ओम ओम ये होगा। जब दो सुरों के दरमियान का वो सिलसिला बना तो उसका सेंटर उन्होंने देखा तो वो माँ मिला। उसके बाद ये एक साज आप देख सकते हैं तानपुरा, जो क्लासिकल के रियाज के लिए 4 तारे होती हैं,
1: मोस्ट कॉमन,
0: उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना किसी भी मुल्क में। 4 तारों में 3 तारे सिर्फ एक सुर पे, एक बेस का सुर, 3 तारे सा पे, एक मा पे, पा पे या नी पे। जब उसको परफेक्टली ट्यून करके छेड़ते हो तो उसमें गा की आवाज जो है ना, साउंड वो नेचुरली आती, उससे वो ये आपका ट्यूनिंग फोर्क बना था। अब वो सुर हो गए हमारे पास सा गा मा, अब सा छेड़े तो सा पा, सा गा मा पा, 4 सुर हो गए।
1: ठीक है,
0: ये सामवेद तक थे तो। लेकिन जो सुर टर्न होता है उसका एक कॉर्ड खुद नेचुरली मिलता है, हर शख्स के कान म्यूजिकल नहीं होते, जब वो कान म्यूजिकल होंगे तो उसमें से सा मा सा पा नजर आते रहेंगे। गा टर्न होगा तो नी बन जाएगा, वो पा के टर्न से रे बनेगा, रे के टर्न से धा, इसका मतलब 7 सुर सामवेद के बाद बने। फिर इनकी जो सेटिंग है वो चाहे म्यूजिक वेस्टर्न है चाहे ईस्टर्न है, इनकी जो है ना वो आपस में ड्यूरेशन सारी सुरों की डिवीजन, ये बड़ी मुश्किलों से, आपको तो ये अच्छा लगता है ना, लेकिन कई मुल्कों के जो सुर हैं वो थोड़े थोड़े फर्क भी है, जो जिनको सेमी टोन्स कहते हैं।
1: ओके,
0: वो सेमी टोन्स के हिसाब से वो चेंज है। तो वो करते करते पैथागोरस, मतलब जो के क्राइस्ट से 1500-1600 साल पहले थे, मैथमेटिशियन थे, काफी लोगों को पता है क्योंकि अलजेब्रा ज्योमेट्री तो सबने पढ़ा है ना, तो उसमें वो पैथागोरस का नाम, फीसागोरस का नाम आता कि ये उनका दिया वो फार्मूला और थ्योरी।
1: ठीक है,
0: उन्होंने ये जो है ना मेयर करके स्ट्रिंग पे के निशान लगा दिए कि यहाँ रे बोलेगा, ये गा मा पा था 7 सुर, वो 7 सुर सेट हो गए तो फिर उसके उनको देखा दरमियान में डिस्टेंस है तो वो रे कोमल बाकी 12 सुर हो गए। तो वो फिर और जो जरा जिनके कान और ज्यादा म्यूजिकल थे उनको वो सेमी टोन्स नजर आई, उनको श्रुतियां कहा जाता, कई लोग तो उसको भी सुरी कहते कि बारीक सुर है, लेकिन वो सेमी टोन्स 20 है। वो कर्नाटक सदर्न वो जो पार्ट है इंडिया का, वो अभी भी वो जो है 22 सुर,
1: अच्छा 22 है,
0: जिनको हम श्रुतियां कहते हैं, वो भी श्रुति कहते हैं,
1: तो
0: वो उसी से उन्होंने 72 स्केल बनाए। एक व्यंकट मुखी थे, वो भी मैथमेटिशियन भी थे और सारा कुछ, वो 72 ही माने चले जाते इजी करने के लिए। उसमें से पंडित भातखंडे ने ये 19th century के शुरू में, उससे पहले ये म्यूजिक हमारा संस्कृत की बुक्स में था,
1: राइट,
0: और पोएटिक में मेरे को पढ़ ही नहीं सकता था, बुक्स को पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी, उस्ताद पढ़ते थे तो वो सिखाते थे भातखंडे से पहले। बल्कि अब भी ये है कि कई उस्ताद डायरियों पे नोट नहीं करने देते, राग अस्थाई त्रय वर्ड्स जो है,
1: हाँ जी सर, ये एक चीज बहुत कॉमन है बल्कि हमारे म्यूजिक में भी कि उस्ताद जो है कई जो है वो अपनी इन चीजों को छुपाते हैं, अपने टीचिंग्स को छुपाते हैं। सर इस बारे में मैं इस पे आपसे जरूर कॉन्वर्सेशन एक करना चाहूंगा कि एवोल्यूशन के बाद भी अब जो हमारे पास चीजें हैं उन पे क्यों लोग अब उसे छुपाते हैं, क्यों उस बारे में ओपनली अपने शागिर्दों को नहीं बताते। तो हम इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर इस पे कॉन्वर्सेशन। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और ये है प्रोग्राम सुर कहानी। हम कॉन्वर्सेशन में हैं उस्ताद परवेज पारस साहब के साथ और हम क्लासिकल मौसीकी के अंदर डिग कर रहे हैं एंड वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट क्लासिकल म्यूजिक हैज टू होल्ड फॉर अस। सर, मैंने आपसे अभी ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन किया था कि जो क्लासिकल म्यूजिक है और जो हमारे उस्ताद हैं क्लासिकल म्यूजिक में, अक्सर उस्ताद जो आपने अभी बातें हमें बताई हैं ये बातें तक नहीं बताते, तो ऐसा क्यों है? इतना हाइड करने वाला जो एक कल्चर है उस्तादों में और हमेशा से ये चलता है, ऐसा क्यों है सर उस्तादों में?
2: इसमें दरअसल दो पॉइंट है। एक तो ये कि मैंने जैसे पहले उसका जिक्र किया कि इसको सीक्रेट समझा जाता है, तो पुराने जो उस्ताद थे, अब भी होंगे है, वो ये चाहते थे कि उन लोगों को सिखाया जाए कि जो एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज को कंसिडर करते हो, समझते हो, उनके अंदर वो जो है म्यूजिक क्वालिटी हो, सुर को समझने का काम लय उनके अंदर हो, और वो ये काम ट्रांसफर होता है। इसको ऐसे आप साइकोलॉजिकल समझें या स्पिरिचुअल समझें, जो ये बात नहीं समझ सकते उसे म्यूजिक नहीं आ सकता। तो वो ये चाहते थे कि ऐसे बंदे में ट्रांसफर किया जाए जो आगे भी चले। तो सिखाने की जो था ना तरीका, वो तीन तरह का था। एक तालीम खास होती थी, खासुल खास, एक आम। जो खासुल खास तालीम थी वो सिर्फ अपनी औलाद को बताते थे और वो भी टैलेंटेड उस्ताद, और वो घर के जगह ऐसी बनाई होती थी कि जो आपकी जगह ताकि बाहर को आवाज सुने ना, कई बार साथ तबले वाला ना होता, नहीं होता था, ताकि वो याद ना कर ले। जाहिर वो साथ बजाएगा तो उसे भी याद हो जाएगा। तो वो दूसरी तालीम जो थी खास, वो अपने भांजों भतीजों दामादों को बताते थे कि ये पेट पाल। तीसरी तालीम घर की ड्यूड़ियों में हो, अलग घर से, उनको कहते थे यार इनको बता दो, आए वो खिदमत कर रहे हैं। उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि आज तो इन्हें ट्यूशन तय कर दी कि मंथली आप जो भी दे रहे, हम वो कंसिडर इस वक्त जिक्र नहीं करते कोई भी दे, क्योंकि अभी हमारे पाकिस्तान में कुछ सेट नहीं है। वो एक काम सिखाना वही होता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा दे रहे होते हैं, कुछ थोड़ा। उस वक्त वो ट्यूशन सिस्टम नहीं था, शागिर्दी थी। एक धागा बांधते थे गुड़ चने और वो शागिर्द खिदमत करते रहते थे, वहीं पलते थे। बादशाह नवाब उनको खर्च देते थे। जब मुगल पीरियड खत्म हुआ तो नवाबों का दौर हुआ, तो वो घराने बन गए। वो और काम गड़बड़ पैदा हुआ, जो हवेलियों बड़ी बड़ी बिल गई नवाबों से, वो अपने स्टाइल दूसरे लोगों को नहीं बताते, तो वो किसी का स्टाइल अपनाते भी नहीं थे, अच्छा नहीं समझते कि ग्वालियर बड़ा घराना है, दिल्ली बड़ा घराना, जयपुर, वो अपना स्टाइल गा रहे हैं, वो अपना स्टाइल होना भी वैसे चाहिए कि लता का स्टाइल है ना, उधर से रफी का, किशोर का, सबका अपना अपना स्टाइल, मेहदी सन गुलाम अली। तो क्लासिकल में स्टाइल होता था, अब वो बहुत कम। अब वो अमीर खान साहब ने कुछ ऐसा किया, ऐसा सोचा उसका डिजाइन, क्लासिकल का बैलेंस भी, वो सब घरानों वालों ने चेंज करके उनको ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब उससे आगे हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन म्यूजिक जो है ये तो है कि अंदर उतरे रूह के, जो मैं चाहता हूँ होना भी ऐसा चाहिए। खास तो क्लासिकल देखे ना, फिल्मी गाना वो बहुत अच्छा है, अपनी जगह लता ने, आशा ने, नूर जहां तो उन लोगों ने, रफी किशोर उन्होंने गाया, एक फीलिंग उसकी बनाई कि ये सिचुएशन है। वो दर्द से म्यूजिक डायरेक्टर ने क्लियर लफ्जों को कराया कि जाति को वगैरह है ना चाहते, लेकिन क्लासिकल में परवाह नहीं की जाती। लेकिन उसमें भी एक वो दर्द फीलिंग की आग की जाए, जिसको आकार कहते हैं, सा लगे सुर पहला सुर तो लोग चैन आ गया, वो गाना खत्म होता जा रहा। लेकिन फिर भी लोगों ने घरानेदार लोगों के अलावा भी सीख लिए, उन घरानेदार लोगों के आगे पता नहीं ये क्या सोशल को सेटअप है, वो लोग नहीं रहे। ग्वालियर घराना बहुत बड़ा घराना, अब उनके सिर्फ शागिर्दों से चल रहा। जो थे घराना चलाने वाले लोग, हद्दू सुखा, खासतौर पर नत्थू खां, उनके पोतों के बाद उनके आगे कोई औलाद, मतलब ग्वालियर घराने का कोई, उनके ननिहाल और ददियाल में कोई जिंदा नहीं।
1: राइट।
2: तो बाकी कुछ कुछ घराने कायम है, पटियाला घराना है, श्याम चौरासी, देहली घराना भी है, उदयपुर कुछ है किराने वालों में से, तो वो एक स्टाइल होता है। ये तो ठीक है रफीक किशोर का स्टाइल, लेकिन जो भी स्टाइल हो मेरे हिसाब से वो इतना उसमें एक पैथोस हो, एक फीलिंग हो गायकी में, ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर हो। राग देखे ना जो जब शुरू हुआ, मतलब दूसरी सदी सेकंड जो है तब से ये राग लफ्ज शुरू हुआ, उससे पहले गाया जाता तो उसको जाति कहते थे।
1: ठीक है,
2: बात तो एक ही थी, वो चेंज होते होते उनके नाम चेंज हो गए, कुछ बदलते गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट थे
1: लेकिन चीजें वही रही।
2: ऊद से गिटार बन गई है ना, जैसे देखते देखते वो बन गया हारमोनियम, वो ऑर्गन से हारमोनियम बन गया, तो आ गया वो कीबोर्ड ही बन गया, तो वो इस तरह होता है। लेकिन गाने में क्लैरिटी जो है ना वर्ड्स की, लोगों को समझ आए, ये ठीक है इसमें हिंदी के वर्ड्स निकालने नहीं चाहिए, उर्दू अरबिक पर्शियन की स्थाई अंतरे हैं, कुछ पंजाबी भी, लेकिन लफ्जों का जो इस्तेमाल है म्यूजिकल लफ्जों के लिए, वो जो ना ब्रिज भाषा, वो लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते, लेकिन चाहिए ये कि जो सुनने वाले उनको एक्सप्लेन किया जाए और उनके जो है ना तलफ्फुज के साथ साथ लहजा भी अच्छा हो ताकि लोग समझ सके। ये हो, क्लियर हो, चेहरा साफ सुथरा हो, आ जो है आ आ हम कह रहे आ, वो ओ आ इस तरह ना हो।
1: ठीक है,
2: उसमें एक्रोबैटिक काम कम हो, सुकून से बैठ के गाया जाए और वो क्लियरली जिस तरह कंपोज्ड चीजें होती हैं फिल्मी या गजल, उसमें एक फीलिंग दर्द, उन पोएट्री को देखते देखते बहुत बड़े गाने वाले गजल कहते हैं एक गजल के जो शेर है 20-25 बार सिर्फ आप वो रिसाइट करें, पढ़ें, उनके मीनिंग पूछें, उनके तलफ्फुज लहजा जो है उसकी ठीक प्रैक्टिस करें, फिर वो ट्यून गाएं।
1: Right.
2: फिर वो कहते हैं कि कॉपी कम से कम करें, कॉपी करते रहेंगे अपना स्टाइल ही बनेगा। जैसे मेहदी सर, उन्होंने अपना ही स्टाइल गाया, गुलाम अली ने अपना स्टाइल, रफी ने अपना स्टाइल, रफी ने ये नहीं किया तभी वो रफी, कि किशोर का स्टाइल, किशोर ने अपना स्टाइल, मना ने अपना स्टाइल, तो वो ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करनी, ये नहीं कि चलो चलने दो किसी के, गा ले कोई बात नहीं, लेकिन अपना मनवाने के लिए अपने स्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करें, वक्त लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूंकि स्पिरिचुअल सा काम भी है, चाहे आम ही हो, सुर पे वर्क किया जाए, सुर जो है वो स्कैन हुआ, वो मतलब हम कह रहे हैं आ, ये आ ऐसे रब सुर फटे ना इसमें, फिर इसको साफ करते, दर्द पैदा करते, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग करना, रियाज करना।
1: राइट।
2: सुर को खर्ज कहते हैं, पहले सा को, वो कहते खर्ज का रियाज, उसको देखते रहना कि वो एक जर्रा भी चढ़ रहा है उतर रहा है, आवाज में लर्जिश है, उसको रियाज करने से खत्म हो जाता। आज के लोग उस तरह रियाज नहीं करते, और रियाज जो है वो जो वोकल है ना, वॉइस कल्चरिंग है, वो किसी की गाइडेंस में करनी, को पास बैठा हो, कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो, आजकल बड़ी आसानी आपके पास लैपटॉप ना भी हो ना कुछ स्टूडियो, ये मोबाइल है, मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग करें सुर के लगाने की, हफ्ते बाद फिर रिकॉर्डिंग करें, फिर देखें उसको सुने, और किसी को सुनाए भी उस्ताद के अलावा भी कैसी लग रही है, फिर वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करते।
1: राइट। सर एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने रियाज की बात की है कि रियाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके जो सिंगिंग है, आपकी आवाज़ के लिए, और स्पेशली आपके नोट्स स्कैन करने के लिए। इस पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना, एक छोटा सा सवाल है मेरा, बट उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रियाज का प्रॉपर तरीका और रियाज का सही मायने क्या होना चाहिए। तो दिस इज़ Saurabh Shams and you're listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: Somebody.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप सुन रहे हैं शो फैकल्टी आवर। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में एज अ सीनियर लेक्चरर अपने जो है खिदमात पेश कर रहे हैं। उनका नाम है असद ताशफीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: सर मैंने तो थोड़ा सा आपका रफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे ये बताइएगा सर कि एज ए सीनियर लेक्चरर आपने बहुत ज़्यादा जो हैं वो चीज़ें फेस की होंगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स पास की होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पार करके आप एज ए सीनियर लेक्चरर यहाँ पे पहुँचे होंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिएगा कि किस तरह से आप इस मकाम पे पहुँचे हैं।
3: राइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बेसिकली टीचिंग का मुझे हमेशा से शौक था और कुछ मतलब रीडिंग राइटिंग एकेडमिक शौक हमेशा से ऑलवेज हैड अ स्कॉलरली बेंट टू माई सेल्फ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो आई डिड माय अंडरग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मेजर किया। बाकी हमारे और भी दूसरे ह्यूमैनिटीज़ और जिस तरह हमारी फैकल्टी है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते थे उनका मुझे शौक था। तो वो मैं अपने प्रोफेसर से इंस्पायर हुआ काफ़ी, बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे लोग थे और उन्होंने जो 4 साल उनके साथ

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد تاشفین صاحب، اینڈ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ایک سبجیکٹ ہے، جو کہ اوور آل جو سبجیکٹس ہیں، جیسے جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے اس کی جو سب برانچز ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو پولیٹیکل سائنسز کی برانچز ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کر رہے تھے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے جو گریجویٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب الومنائز بن چکے ہیں، سر وہ کسی ریناؤنڈ پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ریناؤنڈ جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہیں؟
2: ہاں بالکل، ہمارے ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو مینی الومنائی یٹ، ہمارا ابھی صرف دو بیچ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی اچھی پہنچ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جا چکے ہیں۔ ابھی صرف پچھلے سال ہی ہمارے دو اسٹوڈنٹس، حالانکہ ہمارے کوہارٹ از ناٹ ویری لارج، اس کے باوجود ٹو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان فارن کنٹریز۔ ایک اسٹوڈنٹ ہماری ٹرکی میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہنگری میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں فار ڈوئنگ اے ماسٹرس ڈگری۔ تو یعنی یو سی پی از اے گریٹ پلیس ٹو گو اینی ویئر، اٹس اے اسپرنگ بورڈ، اگر آپ باہر جانا چاہیں، فنڈنگ بھی لینا چاہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ملک کے اندر بھی کام کرنا چاہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ابھی ملا کچھ دن پہلے، اور وہ ہی واز مائی اسٹوڈنٹ فرام دی ایٹھ سیمسٹر لاسٹ ایئر میں تھا، اور وہ ماشاء اللہ نکلتے ساتھ سنتا ہے کہ سر میری تنخواہ آلریڈی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور ابھی اس کو گریجویٹ ہوئے لٹرلی ابھی کچھ 2 ماہ ہوئے تھے۔ تو ماشاء اللہ یو سی پی کے اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ بالکل۔
1: اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بندہ میڈیا پڑھتا ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتا ہے، ایز اے نیوز اینکر کام کر سکتا ہے، تو سر جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتائیے گا سر کہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز اور کیا کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟
2: پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر، یہ آئی مین دیر از اے ویری وائڈ ارے آف ایریاز جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ جنرلی سول سروس کا ہوتا ہے۔ تو جنرلی اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر پڑھتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ ہمارے سول سروس ایگزام میں بہت ہائی ہوتا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو یا پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اسٹوڈنٹس دے جنرلی ڈو ویری ویل۔ اور آپ اگر دیکھیں جو پاس اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر رکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سی ایس ایس کا ایگزام آپ کا ہے یا پی ایم ایس کا، اس میں بڑا ہیوی ایمفسس ہوتا ہے ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے بیسکلی آپ کی سی ایس ایس کی تیاری ساری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے آدھے سبجیکٹ سی ایس ایس کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ میڈیا اسٹڈیز، آئی آر پول سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیا میں بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کو دنیا کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں آسانی سے جا کے وہ اینکر پرسن یا انالسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل سبجیکٹس چونکہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ایریا اوپن ہوتا ہے۔ آئی مین فار ایگزامپل آپ نے کوئی جنرل مینیجریل جاب کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیسیفک اسکل، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سب ایریاز بھی اوپن ہیں، مینجمنٹ، بزنس کے اندر، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر۔ میرے بہت سے جو جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی وہ کارپوریٹ جابس بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ کا این جی او سیکٹر ہے، آئی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہے، کنسلٹنگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔
1: ویل دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر سر، کہ ایک جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، دیٹ از ویری نائس ٹو ہیئر سر۔ اچھا سر، موونگ آن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے شو کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایڈمیشن کے کرائیٹیریا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس جو میرے لسنر نے ابھی ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، سر کیا کرائیٹیریا ہے اس کا، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ہیومینٹیز آف سوشل ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے، مطلب اس کو کتنے انٹرمیڈیٹ کے مارکس چاہیے اور کیا اسکالرشپ وہ اویل کر سکتا ہے؟
2: ہاں، اس میں ہم جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آرٹس پڑھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مارکس کی بات ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکور 50% مارکس، جو آپ نے اگر میٹرک ایف ایس سی میں لیے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔
1: اچھا سر، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو आई गेस द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो कि ये है कि लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, UMT है, UOL है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑफर करवा रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो UCP है, UCP ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे सेट अपार्ट करता है, हम क्या ऐसा यूनिक दे रहे हैं, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है?
2: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपेटिटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं, फॉरन अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty उसका emphasis आ रहा है इस बात पे है कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change. और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और स्टूडेंट्स उनसे खुद मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ओपन फ्रैंक एनवायरनमेंट. तो जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें या मार्केट में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में, तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मैंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेकर, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
2: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली PhD भी लॉन्च कर दिया IR में, और पॉलिटिकल साइंस का BS भी इतना पुराना नहीं है, और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर PhD की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू UCP.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए, तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि UCP का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
2: जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को We have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आके हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो एवरी स्टूडेंट हैज़ ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच्ड विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल आएँ या एकेडमिक मसाइल आएँ दे कैन ईजिली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दे कम एंड सिट, दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद.
1: Well, that is great to hear, sir. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज़ करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो IR है उसको क्यों चूज़ किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज़ किया जाए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और ज़ाहिर है स्टूडेंट्स हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक FSC करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरत को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल टेल यू गिव यू दैट परस्पेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को यही पढ़ना चाहिए। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यू नो, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्यों पढ़ने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर यू नो डिशिंग आउट सो मेनी आईटी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है, एक तो यह है कि आईटी चूंकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली एआई इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है, तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अब ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद एआई कंप्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो, इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द यूएस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं एआई के ऊपर, वो ये बता रहे थे कि हमारे अब एआई के जो एजेंट्स हैं, जो एआई बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो एआई की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी एआई इज बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर जरूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, एआई ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, एआई आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले चैट जीपीटी 5 आ गया, या आगे ग्रॉक 4 आ गया, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर एआई की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, आईटी की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह यू नो कंप्यूटर एजेंट्स हैं, तो इंसान कहाँ पे है? वहाँ पे उसका दिल करेगा कि मैं कोई पोइट्री पढ़ूँ, कोई हिस्ट्री पढ़ूँ, कोई फलसफा पढ़ूँ, कोई इंसानी ताल्लुक बनाऊँ। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो वहाँ पे फिर दिस इज़ वेयर यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ का एक जो ग्लोबल स्केल है वो पॉलिटिक्स और आईआर है। तो वहाँ पे फिर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ वेयर रियली आई थिंक फ्यूचर में इवन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव यू विल बी बेटर ऑफ स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, आईआर देन स्टडिंग इवन कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ माय व्यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि एआई वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड।
2: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं।
1: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू FM 92.6। आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ताबून से पेश किया जा रहा है।

0: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। पीटीए
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.7।

सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP Ki Duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6। महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: Spectrum 160 watt.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं,